जुग जुग सुबा हुई पौड़ी, तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई, तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई, वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई, गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई, शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत।

गेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदार रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लौ बरी नार संग पई आगे सजन सुहेला मरखत लो सब लोग कटंब भयो।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नरनी भ्रम सूआ। वेद पुराण सबै मत सुनके करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक कह काजा, भजियो ना रघुपति।

न जाई। हमरा भरम गया पहो भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई, सब

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौ पग बेरी तू घर घर मई।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

ससैल सुख माने कबीरै सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनिय क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अट सट तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म भागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीत

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब

प्राण भेद भेद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सर नाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रवदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

तिसे आज्ञा धरै साहिब भावै सो परवान सो सेवक दरगाह पावै मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए।

जाना। जे साथ रखिए बीजर लाए, जा परखिए खोटा हुए जाए। जैसा करे सो तैसा पावे।

गुरुपद साधी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप तरे सगले कुल तारे। दान संबंध सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान। तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप। था नष्ट जग प्रित होए, डूबता इव जग। कल मह राम नाम सार, अखी तामी तह नाक पकड़ है। ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है। सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे। एहो पदम अलो खतरिया का धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अष्ट साज साज प्राण सोध, करह वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास। तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। ऐसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत।

आए पूरे गुर की साची बाणी सुख माने अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो भाई दुबदा मार।

गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मल धोए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, किस सदा हरख नाही कदे सोग। आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे हर ते सुख पावे। बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले। जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

जन निर्मल होए, अंतर नाम बसै पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

मूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

गुरमुख करनी कार्य कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैं गिल मिकदारा, गुरी अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे नासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहु जुग मह अमृत।

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए, तना श्री महला।

कृपण को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

ज्ञान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारी गत में तो कह ना सकह प्रभ हम क्यों कर मिलह अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाव ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महा

भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बन आई, बहु चिंत वसारी, हर नाम उर तारी, नानक हर पये है सखाई, तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ, हर पौ जल पार उतारी, मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट, इव भण हर नाम मरारी, मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी, रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब पयो मन उत्तम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पात राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है सन तमारी।

तनासरी महला चौथा। चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाव। गुर प्रसाद को बिरला पावे, जिनको ललाट लिखिया तुर पाऊ।

करती जय। नानक हर सिमरन का है चाव, तना श्री महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आव है, सब गाव है हर हर उत्तम बाणी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी मोहल्ला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

कीर्तन पुरख विधाता पाई अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख परम पहु भागा पई परापत वस्त।

सहज सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहा दिन दिन करत।

पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन एहो नानक कीनो चोला।

माया मोह भूलो अवरै हीत। हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत। अमृत संग ना

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाय बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ नह सुनिए नह मुख ते बकिए नह मोह ओह डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कै लागै मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जलै संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नान।

फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

पधारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

जा की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटह।

घट घट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरे नार तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद घर बाहर तेरा परवासा तू जन कह है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करह कराव है स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे

सारे नासन भाजन थाके घर मंगल वाजह नित वाजे अपने खसम नवाजे अस्थर रहो डोलो मत कबहु गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भू मंडल मुख

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

पाहे ना साकै जाले रहाओ। निरतन कौ तन अंदले कौ टिक, मात दूध जैसे बाले। सागर मैं बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई नवनित, रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अंद सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह भये मन निर्मल, नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवां नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ता का युग मह धर्मा जन

रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। नासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहु जात। सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात। रहाउ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाउ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाउ। जिसका साथ नहीं रख लिया पूर्ण प्रभ की भक्ति मेल लियो आपे सुख दाता नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरह प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओहो तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत मरार सहाय हो दा।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोय ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। धनासरी महला पंजवां कर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा कर तारु हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राख नहारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। धनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा। धनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे।

बंद हर देवनहारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। बाहर भीतरे को जानो, एह गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परो रहाऊ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी। गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हौ मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म धरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप।

ना बहु भेख है, कड़ भांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे, नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भये उदासा, मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए, आचारा विचार शरीर, आद जगाद सहज मन धीर, पल पंकज महकोट उधारी,

नानक सहज पाए गुण गाय। तलासरी महला पंजवा घर छेवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो जो जूनी आयो तेहे तेहे उरजायो, मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओट साध। राखो दे कर हाथ कर कृपा मिलो हर राया, अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई। करो सेवा गुर लागो चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई। रहाओ अनक अपाव करो माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहावे।

पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइए रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखे जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे।

आप पूरा नावण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला।

मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आत क्यों दर जाए साजियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए साजियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

हो पूरे सतगुरै जियो हौ तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो कदे ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बडभाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिलै वडभाग ता हर रस आवे जियो दूजै पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया हो मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोरिया दूजै पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावै ता हुक्म समावै हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम त्याया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

पूछे तप कर बहुर ऐबू, या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाउ, सोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाय, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इन्ते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहू पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण धर मूंड बलाई। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से पाई, बारह योजन शत्र चले था। देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती। रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी। खिन मैं पई पराई, दुर्बासा से।

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है सीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया मह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइय, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बालहा।

रहाउ ज्यों धरनी को इंद्रबालहा कुसुम बास जैसे पवरला ज्यों कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कहरव दास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पा।

तयो उजियारो पवन सगलारी नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल संस्।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कारो अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप।

जैत श्री मोहल्ला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका काखा। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानो लाखा। मेरा मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी। माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार दी।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ तन तन वड़ भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म किन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवह हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेउ तिन मात की जय हर बांजा जिन सुन्नी देहे फिरै बिन नावे हुए खप खप मुए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महाजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महाजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत श्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तने अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करहु गुर मेलहु,

हर हर हर हर भगत दिरडावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाह, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सतसंग।

कहा खिन खिन भगत करह दिन राती गुरमत भगत अमाहाराम हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा गुरमत पंच दूत वस आवह मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम।

था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत

तोल अत भारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे मह दीप रहाओ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रसम है मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना करीजै।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनी शी छंदा यार वे तैरावया।

ठाकुर हों किद्दि गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एहे करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथिया। किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया। उदम कर है अनेक, हर नाम ना गावही। भरम है जोन असंख, मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर, गणक कशु ना आवे। बीज बोवस भोग भोग है, किया अपना पावे। रतन जन्म हर अंत जुए, प्रभु आप ना पावही। बिनवंत नानक भरम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया। नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया। कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण, नह निमख मन मह वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर, बिनस बार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार, कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए, अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर, मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते, हर नाम भोजन खाया।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वतर में नानक हर रंग।

अथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाई है नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर भगत पा

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान परमिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान परमण है, कौतिक कोड़ तमाशिया चेतना आवस नाव, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

बंदा वै त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं। सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत। नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा। नानक आसड़ी निबाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी। आसावंत

प्रिय होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरी नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करन हर रमण संजोग पूर्ण है गोपाल दर्श भेटं।

पाईऐ वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया। मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया, तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया। सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर। गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह, गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम। सतगुर चरणी लगिया पौड़ी, धन धन गुर देव जिस संग हर जपे। गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे, पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे। काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे, गुण गाए बेअंत रसना हर जसे। सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको, वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत। नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला, हर इकस पह अरदास। नाम वखर धन संचिया

कई है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर

आदि संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाउ। ऊच समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साद संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवा सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न

दुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाओ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंद करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहु ना होए रहाव, हौ टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

महाराज रोगाथ बाहु स्यो लुबड़ियो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिखियाते

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निमक ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा।

हम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

जावन टोडी महला पंजवां माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दुए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अवनासी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काड लियो जाने अपना बिक सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गही।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम धेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख ठोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमान सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत इस देव जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हम मैं रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किस

हरि आपी पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बनजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसकी।

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चुब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ। केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर भीख्या पाई, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इह तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लब रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

सुहागनी वाहै, किनी बाती सहु पाइय, जो किछ करे सो भला कर मानिय, हिकमत हुकम चुकाइ।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

काया कपड़ टोक टोक होसी, हिंदू सतान संभाल सी बोला, आवन अठतर जान सतानवे, होर पी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला, तलंग महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी, सच साहिब साचा खेल सब हर तनी, सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी, जिस नाही कोई शरीक, किस लेखै हो गनी रहाओ, पौन पानी धरती आकाश घर मंदर हर बनी, विच वरतै नानक आप, झूठ कहो क्या गनी, तलंग महला चौथा, नित निफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया, जब आने बलवंच कर झूठ, तब जाने जग जितिया, ऐसा बाजी सहसार, ना चेतै हर नाम, खिन मह बिनसै सब झूठ, मेरे मन त्याहि रामा रहाउ, सावेला चित ना आवै, जित आई कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लए छडाई, जिस कृपा कर हृदय वसै, तलंग महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर करदं आलम दुनियाए, असमान जिमी दरखत आब, पैदाइश खुदाई, बंदे चश्म दीदं फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफल हवाए रहाओ, गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो, दूजक सजाए, वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी, तब चे कारे बिदाए, हवाल मनूम करदं, पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास, पेश दरवेश बंदा, तलंग घर दूजा।

सदा सदा जप नानक एक सभी ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ है तू होवनहार अगम अगाध।

दान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कहो बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरन पछाना अजहू कछ बिगरियो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौवां जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौतुम जानो नानक हर

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद।

दीखिया अमृत हर का नाउ देवै दीखिया चल है सतगुर भाई पवह ना पीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ताकै बोल साहिब नदर जिस।

उगवै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करी तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगै कुछ न होवई जे सण निशान जाए तैसो जैसा कांडी है

जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मडाया, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जोगत इव पाई है, गली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर सम सर जान, जोगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दसंतर भवे, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, धावत वर्ज रहाई है, निचर चरै सहज धुन लागै, घर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत आमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाज हो सिंगी वाजे, तो निर्भउ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सूही महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराप बला।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहै दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाउ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे तां सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज सुनाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तौ कत अंत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौमे करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचियै भाई जे हलक पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजी कच्चै के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा इहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहू हर आप है संतो जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै, इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै, हर की वडिआई।

पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत श्रृंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब का

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो धीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले जागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

शाम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाउ, लोभ लहर को बिगस फूल।

हरामी, पाहन नाव ना पार गिरामी, गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल फल मही अल पूर्ण बिधाता, सूही महला पंजवा, लालन रावे आ कमन गतीरी, सखी बताव मुझे मतीरी, सूहब सूहब सूहवी, अपने प्रीतम कै रंग रती रहाओ, पाव मनोवो संग नैन पतीरी, जहां पठाव हो जाओ ततीरी, जप तप संयम देव जतीरी, एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी, मान तान हम्बुद हतीरी, सा नानक सुहाग वती।

लपत लपताना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक कहो करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवां घट घट अंतर तुम्हें बसारी सगल समगरी सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर अलाखे अपारी नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवां कमन काज माया वडियाई जा कहो बिन सतबार ना काई इह सुपना सोवत नहीं जानै अचेत व्यवस्था मह लपटानै रहाउ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसर

की देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बानी।

का पांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने काट काट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पाल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हिरदय वसह मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करने हार सगल सिष्ट को दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढ़े जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुर की रेन वड भागी पावे नानक गुरु को सद बल जावे सूही महला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाई।

किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पीखो हर संग सहाय। जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव। पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही। हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। आनंद बनोद मंगल।

तन तूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के परहरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

सुख माना, नानक दीवन हार सुजाना, सूही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंद है नित पारच। माधवे भज दिन नित रहनी, जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ। करत विकार दू कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं धारत। भरण पोखण संग औद बेहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। शरण समराते अगोचर स्वामी, उधर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै भै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ, मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता

आस हर से राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकर प्रब आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु ते आए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

अल्लाह पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

कहीं को सुखी ताकै पाछै जाऊं, छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं। करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाऊं, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं। राग सूही महला पंजवां घर पंजवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया

दुबदा की कुरिया रहाउ निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया।

तरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा घर छीवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बे

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूटे संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल में है मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब शासक इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे उदरै सो कल में है।

ताई जिन प्रभु के चरण पराते मेरे राम हर संतां जे वडना कोई भगतां बाण आई प्रभ अपने स्यों जल थल महियल सोई रहाउ कोट अपराधी संत संग उदर है जमतां कै नेड़ ना आवे जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला। सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई। अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता केटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां जब

सुहावी जित तुमरै द्वारै आया नानक कहो प्रभ पये कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवां तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटै कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गया ले हो प्रीतम प्रभराया, भणत नानक सहो है।

सच्चे की लिव उबरै, बक्षे बक्षण हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया,

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है।

शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हम मैं आवै जाए भरम भलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है

देही होवग खाक पमन उड़ाई एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कप महाई है गर्भ मुसे कर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है।

निवाजिया थापे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वे।

तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नामै ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए।

राखी तृष्णा अग्न बुझाए गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहे आसमाय हर का नाम सत कर जाने गुर कै भाई।

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला। काया कामन सदा सहेली गुरमुख नाम सुमहला। काया अंदर आपे वसै अलख न लख्या जाई। मनमुख मुग्ध बूझै नाही बाहर भालन जाई। सतगुर सेवे सदा सुख पाई सतगुर अलख दिता लिखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा। इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाईऐ गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तलावै आपे तोलन हारा। इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा। मोल कित ही नाम पाईऐ नाही नाम पाईऐ गुर विचारा। गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई। जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई। काया अंदर भाव भाव वसै गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा। सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा। पूरे सतगुर आप दिखाया।

जो मर खाक थी वाह मेरे साहिबा वाह गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन तिसना भूख ना उतरे अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्ध करन मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा होवह तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किशु ना जाए महापुरखा का बोलना हुए कितै पर थाए कोई अमृत भरे भरपूर है ऊना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन सेवड भागी जे ऊना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए।

साच रखा उर तार, मिलिया हुए न विछड़ै, गुर कै हेत प्यार, फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार, मनमुख मन न भिजई हत मैले चित कठोर, सप्पै दुध पी आईऐ अंदर विस निकोर, आप करे किसे आखियै आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरै तां सच बनया शिंगार, सच्चा साहु सच्चे बनजारी उतै कूड़े ना टिकन, उन्ना सच ना भावे दुख ही माही पचन, हौमै मैला जग फिरै

तुझह अराधी दुख पी तुझह त्याई जे भुख देता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि।

चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड़ है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रह ता कोई किहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहू वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुआ बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखण जाई सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावे सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अघाई नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा।

सुतियां गुर सलाहिए उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाओ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस

प्रभ दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृपते।

मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल शरणाए नारायण दीनानाथ भगत परायण रहाओ अनाथानाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रमन गुणा कटिए जम जाला अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै जप गोविंद संगी सब तारी पोहत नाही पंच बटवारी मन बच क्रम प्रवेक त्याई

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व मैं तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी

किति लाख करोड़ प्रिय रोम ना पूजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो हो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाऊ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हौ क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया।

हो क्या क्या कि ना तेरा नाओ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हो सद कुर्बान है तेरे जाऊ जियो सोना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन सियो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा आस जियो हो एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरनिया बाग बेठे आए जियो सात अन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती चाल किया भुली वाटड़ी आस जियो तै सह नालो मुतियस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणे तखत वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकास जियो भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

लाए जियो, सोई दस पदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बता।

संसार न जानी भरम पलानी जोगन बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन फिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैले विस्ती नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरह ने केवल रव रहिया तिहो लोई माए नरासी रोए वछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे घर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी घर सोही है बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परधानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए नानक बिछड़ ना दुख पाए गुरमत

साधु हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

ज्ञान सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मन चाहु कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आए घर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई फिर उचड़िए माड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

गुण रवे मन भावे सोई, गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई, सुख सहज आवे साच पावे, साच की मत क्यों टले, इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले, परपंच मोह बिकार थाके कूड़ कपट ना दोई, मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई, साहिब सो सलाही है जिन कारण किया, मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया, माथे अमृत पिया इहो मन दिया, गुर पह मोल कराया

प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजीय जैसा फिर भावे समझै सूझै जानी जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूझै गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसै भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंदली बिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

हमारा जुग मह राम नाम निस्तारा साजन आए उठे घर माही हर गुण गाव है तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याए ना

होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर न कोई राम तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई।

आवी मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए हर वर पाव है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया करनी कार कमावे शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानण होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

आई संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया

सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गवाए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती,

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग सो रलिया माणी सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वड भागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना।

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा, हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी।

स्वामी सर्वरहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाई, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, पए पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया। व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। हर दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया भौजल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया वड भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख भालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस वे जन हों मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वन्निया इन हों मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हों मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया जन नानक प्रभ देहो मती छड आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ सेजड़ी है आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइये भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माणा नानक दीन भग

गर्ब गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या मान संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिया भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक सरन पया हर

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सब कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक ना

सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारी सुन पै बनासे।

मुखनासे रहस उपजय मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याई सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया।

जी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

जीवन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकानी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो हुई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिने अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु त्याई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर

हर गुण निधि हर संतन कह वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई। जल कल मही अल पूरन।

तेरा कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगियाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी करोड़ हस्त तेरी टहल कमाव है चरण चल है प्रभ मार्ग राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर

प्रभु परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया

आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे है स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे है सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय। बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पीजै। बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी, पेख दर्शन जीजै। राग सूही महला पंजवा, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जाने अवगण को ना चितारी पतत पावन हर बिरद सदाई एक तिल नहीं भन्ने काली घट घट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल थल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल

प्राण अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख ना।

राग दोख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जी हो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निध स्वामी वड भागी हर हर गाया।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीत सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

लाल हुआ रसना रती गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता।

नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हउमै माहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन।

तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ियस होर बाहर धूती तूमड़ी अंदर विसन कोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावै नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

अस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करहे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी, सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

करे वो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

सह की सार सुहागण जान, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुन अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते। तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, थाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बोरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहा, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ, जित हुण खसम

लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना मलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गाव है आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाई हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे चाई हर जीव आप वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरे साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा मिलावन महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हम मैं माया शब्द जलाई डर साचे गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को सम सर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान।

लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, राग बलावल महला चौथा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती ज्यों वाजह जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाउ, माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाकस ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना, कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोऐ ढोर हाथ चम चमरे, हर उदरियो परियो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत भव तारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना, बलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वह मेरे ठाकुर, हम पात्र हीन अकर्मा, मेरे मन भज राम नाम रामा, गुरमत हर रस पाईऐ होर त्यागो निफल कामा रहाउ, हर जन सेवक से हर तारी, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर, हर जपिया वड्डे कर्मा, नाम हीन त्रिग जीवते तिन वड दूख सहम्मा, ओए फिर जोन पुआई है मंद भागी मूड अकर्मा, हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा, गुर सत गुर नाम दरड़ाया जन नानक सफल जनम्मा, बलावल महला चौथा, हमरा चित लुभत मोहे बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा, तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जानी ऊपर कृपा प्रवतारी, मिल सतगुर पार परा रहाउ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मत्ती जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ट लोहो तरा, साकत नर हो छी मत मद्दम, जिन हर हर सेव ना करा, ते नर भागहीन दोहचारी, ओए जन्म मोए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुर सरा, दुर्मत मैल गई हर पजिया, जन नानक पार परा, बलावल महला चौथा, आवहु संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करहु, हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरहु, मेरे मन हर गुण हर उच्चरहु, मस्तक लिखत लिखे गुण गाय, मिल संगत पार परहु रहाउ, काया नगर मह राम रासि उत्तम, क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिले अमृत हर रस पीयो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संत हो चाख देखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिख रस हो, राम नाम रस राम रसायन, हर सेव हो संत जन हो, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो हो, बलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, को जापै हर मंत्र जपैनी, गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो हो, नित सेव हो दिन सब रैनी, हर जन देखो सत गुर नैनी, जो इच्छो हो सोई फल पाव हो, हर बोलो हो गुरमत बैनी रहाओ, अनक उपाव चित भी यह बहु तेरे, सा हुवै जे बात हुवैनी, अपना भला सब कोई बांछै, सो करै जे मेरा चेतना चेतैनी, मन की मत त्यागो हो हर जन, एहा बात कठैनी, अन दिन हर हर नाम त्याग हो,
गुर सतगुर की मत लैनी, मत समत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जंतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाउ सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जा का वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुरु तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवा। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण।

पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हाजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें आप

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावने आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाऊ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकर सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया।

बहु तपत व्यापिया, शीतल पये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना

मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभ पये परसीना बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई है मीता चरण कमल स्यों लाई है चीता हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत जलन बुझै हर हर गुण गावत रहाउ सफल जन्म होवत वड पागी साध संग रामह लिव लागी मत पत धन सुख सहज आनंदा एक निमुख न विसरहु परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी भणत नानक सरन प्रभ ते

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाव तन मन ताने अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवां, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे, रहाव सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुर आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो, रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहू बेरे, बिलावल महला पंजवां। चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। रहाव अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, रहाव ताप पाप संताप बनासे। हर सिमरत किल विख सब नासे, आनंद करहु मिल सुंदर नारी।

तो भगती लागो लपट रहे हो मन बासना गुरमिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत घणी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया प्रिया निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासुर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिस कौ लगा जिसके वड भागा मैला कदे ना होवे नह लागे दागा प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बुलावल महला पंजवां, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वह अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे की तारा हाव। ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

असर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते।

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वड्याई गुरपूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवां महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अभ्याय बस्त संग हर साधक पूर्ण असाय पै बिन से त्यो लोक के आए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार। बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ। ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापियै अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बुलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस पेटिया ताकै सुख परवेस मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब

सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपतासिया तांका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जम

रविया सब थाई। कथा पुरातन इयों सुनी भगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगट सब माही, प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु, जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ। आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना, झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक करिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम। कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाउ। बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया। बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा, दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है, मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे, तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे, आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह, जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राय। पहो किश नहीं करना दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म चितारे जम कंकर नेड़ ना आवे। गुर सिख प्यारे रहाओ, करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना, नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग। ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है, सब भला मनाव है साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल भय हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे हो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਥਾ, ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ। ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ

ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई, रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई। बलावल महला पंजवा, अपने बाल के आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव।

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हौ मोको सतगुर मंत्र दरडाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाई जो जो सरल परयो।

नमस्कार दंडौत वंदना अनकबार जाओ बारे रहाऊ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिर

पूर रही दिनस अर रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जने आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रत्न रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत हे जा स्यो राच माच तुम लागे ओह मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सुवारियो पावक तलै जरावत हे ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत हे दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोई रहो मद मावत हे जाल पसार चोग बिसथारी पंखी ज्यों फहावत हे कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुर है बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते

रहे हो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन पे होए सगल खई, सत संतोख दया धर्म सोच, संतन ते एहो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, किन को सगली सोज पई, बलाव

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिय तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है। रहाउ जो मनुख मनुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत शरण संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाउ सुख सहज अर कनो आनंदा। गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हों क्या कहता। जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ। अन बोले को तू ही पछान है जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता। कहो नानक गुर भये।

सुनो तुम भाई जो कालर भीत गिरी रहाओ जो देखै शिदर तो निंदक उमा है भलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै बुरा चितवत चितवत मरी है निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा आप प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करी है बलावल महला पंजवा ऐसे काहे भूल परे करह करावह मूकर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ काच बेहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंध कूप मह परे ओ प्राणी परम गबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहां परे बलावल महला पंजवा मन तन रसना हर कीना भये आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ ज्ञानपते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवां गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकी शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही बलावल महला पंजवां सदा सदा जपिए प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परिये नित सरनी गुर ते पाइए एहो निदान जन्म मरण की कटिए फासी साची

तेरे काटिया हिन मह हुई गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद।

नाम जन जापी नानक प्रीत लाई प्रभ आपी बिलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निसपोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महा विकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बहा पकर प्रभ काढ लया बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवां।

आपे राखी, पै भंजनी ऊपर करते मान, भई मित्राई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काढे शान, सुख सहज आनंद कनेरे, नानक जीवै हर गुण है बखान, बलावल महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल, कार्य सगल सवारी सतगुर, जप जप साधु भये निहाल रहाउ, अंगीकार किया प्रभ अपने, दुखी सगले भये रवाल, कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल, सही सलामत मिल घर आए।

ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी बलावन महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान।

समान। साधु संग परापत जा कहो तिन्ही पाया एहो निदान। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान। बलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण। जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाओ। विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन। थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन। आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। एक है निर्गुण उग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा। का कौ धराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा। साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवां तुम समरथा कारण करन। ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ। जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन। बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन। करना मैं कृपाल कृपा निद जीवन पद नानक हर दर्शन। बलावल महला पंजवां ऐसी कृपा मोहे करो संत है चरण हमारो माथा। नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ। गुर को शब्द मिरही अरे बासै हर नामा मन संग धरो। तस्कर पंच नवार हो ठाकुर सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरो। नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो। बलावल महला पंजवां ऐसी दीखिया जन स्यो मंगा

कुशल पया गुर पूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजोआ बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी शरण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवा दुपदे कर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपह मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ ताज अभमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए कहो नानक गुरु पूरा भेट्यो आवन जान रहे बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो परसा

भाव है, हार कजर बस्तर आभरण कीने, उडीनी उडीनी उडीनी कब करया वैरी रहाव, सरन सुहागन चरण सीस धर

नवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करै व्रत फुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले है वड्डी वड्याई, दुख काटे हिरदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार है साधार, बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप खाए हों मेटे, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी, अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता, खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई, गुरमुख आपे लख लखैया, नानक दीन दयाल पए हैं, भगत पाए हर नाम समैया, बलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया, मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया, जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरल परे से जन उबरे, ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ, पार अठारह मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभमान विछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया, परम बैराग नित नित हर त्याय, मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पकार है, धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाव पार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हम मैं जाए ता निर्मल होवे, गुरमुख परचै परम पद पैया, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा,
जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जन की टेक हर नाम टिकैया।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरौ सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊ गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊ चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वच्छल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। हिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगै जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कम बंद ज्यो ग्रस्त बिकई।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाउ, रात दिनंत किए पौ पाउ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा, तृतीया ब्रह्म

कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा

मूक शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाऊ किसमें मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाऊ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ महाबल।

एकादशी एक हृदय वसावै हिंसा ममता मोह चुकावै फल पावै व्रत आत्म चीनै पखंड राच तत नहीं बीनै निर्मल निराहार ने केवल

भिन सबनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जहलते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

0: वार वार
1: दिन सरहण तिवें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जां कै मस्तक लिखिया लेख तां कै मन

कहाय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक सते सब दूजा हुआ एको वरतै अवर ना बिया दूजे तेजे एको जाने गुर कै शब्द हर दर निशाने सतगुर भेटे ता

रह मुग्ध गुवार नानक गुरमुख बूजे सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाई। बलावल महला पहला शंत दखनी।

मन सुख सुमान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत

भगत परे पंडहारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाई है चरण राज्य मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना तावह बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले।

हारा करन हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

यो सुख सागर प्रभ भेटे है, नानक सुखी होत एहो जीव संत। सुख सागर प्रभ पाई है, जब होवे भागो राम। मानन मान वंजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातुरी, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पवो सरनाई राम राय, फिर हुए सुहागो राम। सो प्रभ ताज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम। लाज ना आवे ज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम। नानक भगत भाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरह, बल गइये दोहचार नरसना राम। प्रभ भगत बछल न सेवही, काया काक ग्रसना राम। प्रम मोही दुख ना जानही, कोट जोनी बसना राम। नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिस्ता क्रिम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होए मिल बैरागण राम। चंदन चीर सुगंध रसा, हौ मैं बिख त्यागण राम। ईत ऊत नह डोलिए, हर सेवा जागण राम। नानक जिन प्रभ पाया अपना, सा अटल सुहागण राम। बलावल महला पंजवा, हर खोज हो वडभागी हो। मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस तिन्हड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जलह।

था हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मनमुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक स्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुदे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिन्द है ते ब्राह्मणा जे चल सत गुर पाई जिनकै हिरदय हर वसै हमै रूप गुआई गुण रवह गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग मह विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिन्द है चेत लाई नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाऊ हमै रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाय नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई है जिस पूर्व होए लिखिया सो हर गुण गाई है।

सतगुरु का दर्शन सफल है। जिहा को इच्छे तिहा फल पाई, गुर का शब्द अमृत है। सब तृष्णा भुख गवाई, हर रस पी संतोख हुआ। सच वस्या मन आई, सच त्याई अमरा पद

निदान सुख दाता तेरे मन वसै हम मैं जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर सतगुरे।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटियै तां सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवहो हउ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे,

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहू तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वत ना विसाहू भगत जना को सन्मुख होवै सो हर रास लए वे

आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से दवालिये जुग माहे ओए मंगदे फिर है सब जगत मह कोई मुहे थुक ना तिनको पाए पराई बखीली करह अपनी प्रतीत खोवन सगवा भी आप लखाहे जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हाथ ना आवै ओए भावै तिथै जाहे गुरमुख सेवक पाए हर धन मिलै तिथो कर्महीन लै ना सकह होर थ देश संतर हर धन।

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे पृष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुर बख्श लए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

आप न बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर राम रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो बिकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, भवजन निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। विखे विखे की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया,

सागरयान लीपत जियो गयो ताना बाना कछु ना सूझे हर हर रस लपटयो हमारे कुल कौने राम कहयो जबकि माला लई नपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाखस नाख बिदरयो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो।

है भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाउ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी।

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांदे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतम जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो।

नहीं, जैसे पुरवन पात। मिथ्या कर्माया तजी सुख सहज विचार, कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार। बलावल जन्म मरण का भ्रम गया, गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया। गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै, धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता, धुन कहां समाई। त्रिकुटी संद मैं पेखिया घट हूं घट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाऊ एक बूंद जल कारनी चात्रिक दुख पावे।

पहला जे मन चित आस रखह हरि ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई रहाउ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरै कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

प्रशात शीतल माने अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना, रहाउ जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, किनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पछान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड बडना। किस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओहो कटै ना किसै की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावह मन मेरे। सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजै। नित बसह हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह, उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी।

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोव है सात जना पग मल मल धोव है पंच पूत जने एक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याए तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाए।

प्रभ सार, बिन भगती सब हुए खुआर। गोंड महला पंजवा, कल कलेश मिटे हर नाई। दुख बिन से सुख की नो ठाउ, जप जप अमृत नाम अगाई। संत प्रसाद सगल फल पाई, राम जपत जन पार परी। जन्म जन्म के पाप हरे रहाउ, गुर के चरण हृदय उर तारी। अग्न सागर ते उतरे पारी, जन्म मरण सब मिटी उपाद। प्रभ स्यों लागी सहज समाद, थान थनंतरे को स्वामी। सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना। घट घट रमैया सब मह चीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ। जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग। साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान। आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल। रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला। साधु की मन मंगे रवाला हो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवां। धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड भाग। आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर तार बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करन। राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल। जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार। गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे। बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोविंद। जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल। पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही। घट घट अंतर सर्ब सुमाही अपने दास का हलत पलत सुवारे। पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद। तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए। मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार। सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप। सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा। हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत। मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए। हर गुण गावत तरिए संसार वडभागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल। जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान। हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत। हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार। हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा। गोंड महला पंजवां पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गूण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदै तिसका पतन होए जिस को राखै सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे अधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिन।

सादसंग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पोह है साध संग जपै

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां, अचर्य कथा महा अनूप, परात्मा पार ब्रह्म का रूप, रहाउ ना एह बूढ़ा ना एह बाला, ना इस दूख नहीं जम जाला, ना एह बिनसै ना एह जाए, आदि जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एह अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गत मित कछु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए, गोंड महला पंजवां, संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल लिख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै, रहाओ पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां महल।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जा की सरन, निंदक मार पाए सब तरन।

जो नर होवे है तीन भवन में अपनी खोवे है छोड़ है अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस पाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी।

की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मल कियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गण का तरी सो हर नैनहु की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों पूत सीतला तावै खर बाहन उहशार उडावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

दास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापे ज्यों संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन को थाऊ सत संतोख होवे अरदास ता सुन सत बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे पाऊ पवे तेत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाणे ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हों मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बीचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ टुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सतजुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सतजुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदियां ढिल ना लाईए हर जन अमृत कुंट सरनी के वड भागी तित नवाईए राम मोको हर जन कार लाईए हों पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाईए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाईए सतगुर जेवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याईए सतगुर सरल परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाईए एक अपने सवाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाईए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाईए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराईए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगह गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर ना कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है सेन कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर धारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारे हृदय काम कामनी मांगह रिद मांगह हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर धारी जे वड भाग होवह ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन धारी नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पावहु, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहु गुरमुख लिव लावहु, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहु सदा प्रभ हाजिर,

बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर सकती जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाउ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को

व्यापी पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए राम।

तूने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंघर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे पूंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत

कोई बादशाह भिसत कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा, एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

नाही, जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर

अनक पाप ता के पानी हार, जा को मया पई करतार, जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन वा कै संजाम रहाओ, करता राखै कीता कौन, कीरी जी तो सगला भवन, बेअंत महमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

रहाऊ बिन हर सगल नरारथ काम सोइना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहां उहां तेरो उजल मुखा।

त्याग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

ध्याया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संत

जस हृदय वसाई, नानक ते जन उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओह सेवक सेवा करे।

हित, हर तन रास नरास एह पित, काटी बंद हर सेवा लाई, हर हर भगत राम गुण गाई, बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे है हर जन, अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ, आए बने ओ पूर्वला भाग, जन्म

काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत पर

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे, निरपहो निरंकार दातार, तिस स्यों प्रीत न करे गवार, सब साहा सिर साचा साह, वे मोहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपट्यो भ्रम ग्रह, नानक तरिया तेरी मेहर, राम कली महला पंजवां।

खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये न उतरे मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, तां का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की होवा तूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुद बिन दूजा नाही ठाऊ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगाह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पवो भागा निरपो मन बसे, अमृत नाम रसना नित जपे, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सोह।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत न

नहीं जानै भेद अवतार न जानै अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जानै सुन सुन अवर बखानै रहाउ संकरा नहीं जानै भेव खोज तहारी देव देवियां नहीं जानै मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सुमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

आप सगल मटाए मन किंडे से फल पाए हो सावधान अपने गुर सियों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निदान गुर सियों रहाओ दूजा नहीं जाने कोई सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लए छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछतानी रहाउ, जो जो करे सोई मान लेहु। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाई, गनन ना जाई कीम ना पाई, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किस कहन ना जाई, साचे सच अला

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापियो थाप नहारा, इस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माहे अराध।

होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल परा पूर्वला कर्म बन आया हर के गुण नित रसना गाया हर के संत सदा परवान संत जना मस्तक निशान दास की ऋण पाए जे कोई नानक किसकी परम गत होए राम कली महला पंजवां दर्शन को जाइए कुर्बान चरण कमल हृदय तार ध्यान टूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस भेट मिटे अभमान पार ब्रह्म सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ गुर की कीर्त जपिए हर नाओ गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी समसर सुख दुख कदे न व्यापे तृष्णा भूख मन संतोख शब्द गुर राजे जप गोविंद पढ़दे सब काजे गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुरदाता दयाल बख्शिंद गुर चरणी जा का मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा राम कली महला पंजवां इस परवासै बिच रह भवन मूड मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गत नहीं जानै पंच बटवारे से मीत कर मानै सो कर सेव जित उदरह मीत गुण गोविंद रवियह दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरवाद तृप्त न आवे बिखिया साध परमत परमत महा दुख पाया तरी न जाई दुत्तर माया काम न आवे सो कार कमावे आप बीज आपे ही खावे राखन को दूसर नहीं कोए तो निस तरह जो कृपा होए पतत पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को की जय दान कर कृपा प्रभ गत कर मेरी शरण गही नानक प्रभ तेरी राम कली महला पंजवां एह लोके सुख पाया नहीं भेटत धर्म राया हर दरगाह सो बावंत हुन गर्भ नाही बस।

चित लागा, तन तन संयोग सुभागा, संत की धूर लागी मेरे माथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्राणी, जन का सफल दर्श डीठा।

बूटा सूके काष्ट हरे चलूल ऊचे थल फूले कमल अनूप अग्न नवारी सत गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव किरत घणा का करे उदार प्रभ मेरा है सदा दयार संत जना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरनाई राम कली महला पंजवां पंच सिंह राखे प्रभ मार दस बिघियाड़ी।

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रग

सिंध समायो कट के माही, करनहार को किस अचरज नाही, जो छूटो तो जाए पयाल, जो काडे हो तो नदर निहाल, पाप पुन हमरे बस नाही, रसक रसक नानक गुण गाय, राम कली महला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोहे ब्यापिया तोहे, कुदम करे गाडर जो शेल, चिंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाउ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कैताई, गाफल संग न तसु आ जाई, तरत तो हो अनक शाल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर छाने, जिन दिया तिसै ना चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जब पए दयाल, इह मन होवा सादर वाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै सा

साध संग दुख जाए रहाओ। जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दास

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारी, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणी छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोलै झूठ कमावै अवरा कृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपज

बिन से अभमान एक त्याई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव।

असुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध घटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै निमख ना ता कौ गायो। माया को मद कहां करत है संग ना काहू जाई, नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै, सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना, कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा। दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा, जे

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों।

ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो तो वो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई

दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर पीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े

कैसे उतरस पारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए न

सत पुरुता जग सूता मर आवै जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी। सुन समाद सहज मन राता।

राज शरण हम आया, गुर हर भेटे पुरब कमाया, गुर शरण ना आइये ब्रह्म ना पाइये, परम पलाइये जन्म मारे आइये, जमदार बहंत हो मरे बेकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार, एक पांडे पंडित मिस्र कहाव है, दुखदा राते महल ना पाव है, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन आपार, एक बुरा भला साचे कै, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक, गुरमुख

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर महल तीर्थ परमीजै।

दुंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादुर है सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाऊ तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाऊ हौ मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द।

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निध पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही सदा अपना।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कबही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुर ते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिए राम रारी। अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी। तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी। माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी। आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी। नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी। राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया। कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई। एक नाम वस्या घट अंतर।

जो किस करना सु कर रहे आ, अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरट अपाए, सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो तां सुख पावहु, सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई, लख ना लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम फलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। इक ना नाम हो आप पलाई, इक ना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवरना कोई राजा, करत पावस बणत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, बिरले हुक्म मनाई। तिसनो प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदै नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माद, मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

इन्हीं निवल को अंगम साधे मोहे दीन हर हर अरादे तेरा भरोसा प्यारे आन ना जाना वेसा रहाउ किन्हीं ग्रह ताज वन खंड पाया किन्हीं मोन अवतूत सदाया कोई कहतो अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लेती किन्हीं कहया हऊं तीर्थवासी कोई अन ताज भया उदासी किन्हीं भवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्हीं कहया मैं कुलह वड्याई किन्हीं कहया बाहा बहु पाई कोई कह मैं तनह पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं कुंगर निर्तक राई किन्हूं वर्त नेम माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नाम एहु मानना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूजी तृष्णा महा सीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माती काले देहरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर।

पावै नहीं सीजै, कार्ज सबरै मन प्रवत्याइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखियै तत तत तोही, तिस सेवत मन आलस करै, जिस विसरै एक निमख ना सरै, हम अपराधी निर्गुण यारे, ना किस सेवा ना कर मारे, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवा, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ, काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाई,

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्या वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

आप संभाली आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजन पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंध

हर प्रेम भगत बने आई संतो हो, सतगुरु खेप निबाही संतो हो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो हो, रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संत हो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संत हो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संत हो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संत हो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

संतोहु शब्द करहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर

पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया।

भगतः तेरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो हो तिखी वालो हो निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियों रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए। अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सतगुर

मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा, सतगुर तेरा सजानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर अन रस सब बिसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी।

भोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम महजोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जन है केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरह भाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा।

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगाणी सारंग पाणी, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणू, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणू। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणिए, कहो नानक घर प्रभ मेरे कै,

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद पांचत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बनी मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माग फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पौन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महा।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जानै कह जानै गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिया गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुगद सियाना भगत बिहुना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

नए मलाय गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया नीत काम क्रोध काया कौ गाल ज्यों कंचन सुहागा ढाल कस कसवटी सह सोताऊ नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ जगत पशु अहंकाल कसाई कर कर तै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखै सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाध सुगोनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ करै मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद बेद बीचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चेतह एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत स्यो घर जाय सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जाण बंधन काट मुक्त घर आण छाया शूशी जगत भुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना सीजै जोबन जरुआ सिर काल काया सीजै पई से बाल जापै आप प्रभु तिहु लोई जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमावहु, गुर की करनी काहे तावहु, नानक गुरमत साच समावहु, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेस करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी,

शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय भावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टंडोलत टूंडत हौ फिरी तह तह पवन करार पारे तह ते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनकै हौ बल जाओ तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाओ मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाव जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलिहारे जाओ जो असारे सो ताहसी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना

है प्रभु नानक कर संयोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नरंच।

ही पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, सेजन उभरे जिन हर पाया,

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द

राह गोरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करियां घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दो ही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हाथ वडियाईया जय पावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाई वाण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार अड़ाड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई अड़ाड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सदाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार जरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत बिचार सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुर मिले अंधेरा जाई, नानक हूं मैं मेक समाए, सुन निरंतर दीजे बंद, उड्डे ना हंसा पड़े ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वक्खर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वक्खर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बेद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, चित बेद आसा मनसा खाई,

ගමනමටාය අනහතරාති යොමනලාය මනසාය සා ශබ්ද ජලයි ගුරුමුඛ ජෝත නිරන්තර පායි ත්‍රය ගුණ මේටේ ખાයය સાર නානක තාරේ තාරණහාර ආද කෝ කවන විචාර කතියලේ සොන්න කහා කර වාසෝ ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले घट घट कवन निवासो काल काठिंगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइय सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइय गुर कै शब्द हउमै बिख मारे ता निज कर होवै वासो जिन रच रचिया किस शब्द पछाण नानक ताका दासो कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्तै अवगत्तै पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरता आपे करता कहो।

वह है गात मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्भ जिया गुरु बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार ना करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाण अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किश सूजै।

एक माया झूठे आवे ठवर ना पावे, दूजे आवागौन भया आवागौन मिटे गुर शब्दी, आपे परखे बख्श लया।

आय गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तारनहारा हम मैं दूजा पर हरिया मन मुख भूलै जम की कान पर कर जो है हाने हान मन

नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाइए अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हम मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रतो पत स्यों घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हों मैं जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रे भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिन को जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाए, बारह मह जोगी परमाए, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मुख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया पुर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखै रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई,

हार पवजल शब्द लंघावन हार पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला कथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैण के दंत क्यों खाइए सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हिवै का घर मंदर अग्न पिराहन कमन गुफा जित रह अवाहन इत उत किस को जान समावे कमन ध्यान मन मनह समावे हौ हौ मैं विचो खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मनमुख गावार शब्द कमाइए खाइए सार अंतर बाहर एको जाने नानक अग्न मरे सतगुर कै पाने सच भै राता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसै सच अंतर हीया तन मन सीतल रंग रंगिया काम क्रोध बेखे अग्न निवारी नानक नदरी नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवै घर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहै कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै कवन जोध जो काल संघारै बोलै बाणी नानक बीचारै शब्द भाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा सुख दुख सम कर नाम आधारा आपे पार उतारन हारा गुरु

ना पुन्न घट घट सुन का जाने भेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना बरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दिखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादी कोई न राखे बिन शब्द ना ही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरे तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ताकी कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाई नानक पार परे सच पाई सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाय सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलाखे अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू अंतर बा

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अलि पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हउमै प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृप्तासै नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख हो मैं विचों खोवै तव नानक सहज समावै एहो मन निश्चल हिरदय बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाब पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाके सच रपै रंग कबू ना जावे जा एहो हिरदा दे ना होती तो मन कैठे रहता नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिव लाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंभ ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सो सार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योति आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारे हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै विरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होए बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हों मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सूझी पाई।

सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक

देखै जिस वसिया मन माई महला तीजा। मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए। दुख विच जम्मै दुख मरे हूं मैं करत विहाई। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाई। जो देवै तिसै ना जानई दिते को लपटाई। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मेले सोए। सुख है इहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तह सोई। पौड़ी सच्चै तख्त रचाया वैसन को जाई। सब किसे आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द त्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहाउ सलोक कबीर महती कर कै कालिया। आप पिसाए पिसाई तैं सह बात ना पुछिया कबहू ना लाई पाए। महला तीजा नानक महती कर कै रखिया सो सहो नदर करी। आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाई ले। यो पिरम प्याला खसम का जय पावै तैं दे। पौड़ी वेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाए समाई। आपे वेख विग सदा दूजा को नाही। ज्यो पावै त्यों रख तू गुर शब्द बुझाई। सबना तेरा जोर है ज्यों भावै तिवै चलाही। तुद जेवड़ मैं नाही को किस आख सुनाई। श्लोक महला तीजा परम भलाई सब जग फिरी। हावी होई भाल सो सहु शांत ना देवई। क्या चलै तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है। अंतर रखिया उर धार नानक घर बैठिया सहो पाया। जा कृपा कीती करतार महला तीजा। धंधा तावत दिन गया रहन गवाई सोए। कूड़ बोल बेख खाया मनमुख चलिया रोए। सिरै उपर जम डांड है दूजे पाए पत खोए। हर नाम कदे ना चेते हो फिर आमन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड ना लागै कोई। नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी एक अपनी सिखती लायन दे सतगुर मती। एक नानू नाउ बख्शियन अस्थिर हर सती। पौन पानी वै संतरो हुक्म करह भगती। इना नो पौ अगला पूरी बणत बणती। सब इको

ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीरथ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मुख अंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे एहो तप काले, सतगुर नो मिले शब्द संभाले, सतगुर की सेवा एहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम तिस दै दितै नानका, तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

नावे दुख सहाय। नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए विण मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार

घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुरियाई, नाता धोता थाए ना पाई, मुसलमान करे वडियाई, विण गुर पीरे को थाए ना पाई, राह दसाए उथे को जाए, करनी बाजो किस्त ना पाई, जोगी कै घर जुगत दसाई।

संताप औ हट पटन मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोलै गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोलै गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना इस पाखंडी जरा न मरना बोलै चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे आ सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे।

दूजे भाई बोले, दूजे भाई सदा दुख है नित नीर वरोले, गुरमुख नाम ते आई है मत तत कडोले, अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले, आपे परम भुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा नानक।

कपड़ पाट सुई धागा गंड माह पाख केहो चल नाही करी मोहत किश हंड सच पराणा हुए नाही सीता कदे ना पाट नानक साहिब सचो सचा किचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर अपार शब्दे सान रखाई लाए गुण की थे।

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक।

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हौं तिस देवां मन आपना नित हिरदै रखां संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

हुई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मेले प्रीतम मोहे गुर पूरे मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाहिया जिस रख है कृपा तार रिजक समाहिया कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनंद बनोद किशु ना जानिए सर्ब धार समरथ हो तिस कुर्बानिए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवां भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल महला पंजवां विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पात रखै आप सो भवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै सलोक महला पंजवां धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे।

एक अरादिया तिन सद बलिहारे जाऊं तिन की धूड़ हम बाँछ दे करमी पल्ले पाई जो रते रंग गोविंद कह हों तिन बलिहारे जाऊं आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराई गुरपुरे में लाया जन्म मरण दुख जाय जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाय महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती भन्नण घड़न समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक धर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

ब्राह्मणी टिचर रखण गांड जित दिन किश ना हो गई तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराद मन सब किल विख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार उन्नी छड़िया माया सुआवड़ा धन

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा बग ना बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार।

बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवै पावे सतगुर सर्वर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सर्वर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सर्वर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सर्वर हंस दूर न होई करते एवै पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

पैरे पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवां। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवां। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

साहि सब सैनो कृपाल संभाली साहि साहि बिरथा कोई न जाई जे आवे तुदे आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अर

आए अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीर्थ नाइय।

होगा हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंत हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवै कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआओ। जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणै जप तप संयम भाणै ही काढ ले। भाणै जून पवाई है भाणै बख्श करे। भाणै दुख सुख भोगी है भाणै कर्म करे। भाणै मिट्टी साज कै भाणै जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वडियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणी दिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जान।

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देह सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यो रंग लाए औगण कट मुख उजला हर नाम तराय जन्म मरण भव कट्यों फिर जोन ना पाए अंधकूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाई नानक बख्श मलायन रखे गल लाई सलूक महला पंजवां मोहब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवां अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हब थाई वन त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या आपे सबना मंज आपे बाहरा आपे जान है दूर आपे ही जाहरा आपे हो है गुपत आपे प्रगटी है कीमत किसे ना पाए तेरी थटी है गहर गंभीर अथाह अपा

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुल्लै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फुरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद जिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरती है दिल खोटै आकी फिरन बन भार उचाइन सती है जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन थती है।

सच्चा करी सा बात हुए दरहाली गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुई जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली हो रे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब

महन मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देव जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभ तिस सूला, को काढन को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

दया कर झोली पत्रका करहो बिचार रे खिंतायो तन सियो हो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावने धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

फलाई, जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइय संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदिया ले चक्र पुंगा पेटिया ले रायन संगा चूकिया ले मोह मयासा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया।

परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र।

गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारी, अपना जन्म न जुऐ हारी, असुर नदी का बंधै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर, अजर जरै सो निचर चरै, जगन्नाथ स्यो गोष्ट करै, चौमुख जीवा ज्योत द्वार, पल्लू अनत मूल बिचकार, सर्ब कला ले आपे रहै, मन मानक रतना मह गुहै, मस्तक पदम द्वालै मणि, माहि निरंजन त्रे पवन धनी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, तुलके चवर संख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जप है आराध है, सेवक भाई खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जपियो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाऊ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम

तरल रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग।

पाथर भारी हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा खुह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरेओ। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारेओ। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हौ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह धूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रभ धारो। हम सेव है तुम जन पगे।

कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुम रे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरणे इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाव हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

पावे, मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते, सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान त्या।

बोध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचर्ज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाउ, तप्त बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बसियो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बिचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिटह खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ, अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रासे उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना।

दीने, बिनस्यो मूड अभमान, क्या गुण तेरे आख बखाना, प्रभ अंतर जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल।

कीता, बिनसै दुख विपरीता, सब अर्पो मन तन चीत रहाव, कोई विरला आपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर भज जन्म पदार्थ जीत, कोट पतत होहि पनीत, नानक दास बल बल कीत, नाट अष्टपदिया महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम मेरे मन तन नाम आधारी, खिन पल रह ना सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम संभारी रहाव, हर हर हर हर हर मन त्यावहु, मैं हर हर नाम प्यारी, दीन दयाल भई प्रभ ठाकुर, गुर कै शब्द सुवारी, मधुसूदन जग जीवन माधु, मेरे ठाकुर अगम अपारी, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारी, सहस नेतर नेतर है प्रभ कौ,

है दह देश हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिय संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नर सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचै।

हर अमृत सर नावारी, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी, रहाउ संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अतनीके, मन शरदा कर हर तारे, मेरे प्रभ शरदा भगत मन भावे।

पीका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

माने परतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी। श्रद्धा श्रद्धा उपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे। नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे। हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे। रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे। पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे। मेर समेर मोर बहु नाचै जब उनवै कन कनहारे। साकत को अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारी। ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी। संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै है पर उपकारी। संतै संत मिले मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी। लोभ लहर सब सवान हलक है हलक्यो सबह बिगारी। मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी। राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई मैं सत

ताद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

प्राण हूँ। हर मात पिता प्रित पाला, पर माया अगणनित मेलते, गुर राखे दीन दयाला, बहो मैले निर्मल होया, सब किल बिकहार जस जाला, मन अंध भया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर भज सब किल बिख कात, हर हर उरतार्यो गुरपूरै, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ, मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कत काट, हर साजन मेलियो गुरपूरै, गुरबचन बिकानो हट हाट, मकर पराग दान बहु किया, शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त ना पावै, बहु कंचन दीजै कट काट, हर कीरत गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर भरम पौ भागा, लज भानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट, जन नानक

अवर कहना झूठियां नित करै जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वो साध के ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर

राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरि मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किस कान सब किस करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हों बलिहार जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

सलाही है जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई

काल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम नाराच है, एक हर हर चरण

होकर पत तपनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौं दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

साहि बिन दर्शन कैसे रहो स्नेही। मारू महला पहला मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाउ सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना।

पैर मलोआ, जपत रहा तेरा नाव। लूण हरामी नानक लाला, बख्शे है तुद वडियाई। आद जगाद दया पत दाता, तुद विन मुक्त ना

जाई, ना यह धन डूबै ना इस धन को मिलै सजाई। इस धन की देखो वडियाई, सहजे माते अन दिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किने परम गत पाई। भणत नानक अकथ की।

नाम अजाती एको हाट साहो सबना सिर बन जारे एक भांति दोवें सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

छोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी दियो, हम है जलिया मनो विसारी।

वह ख्याली जमपुर फासिंगा जमजाली हेत के बंधन तोड़ ना साकह ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत।

सबल कहियत है इंद्री किसते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बनासी जो तिस पाणा सो सत कर मानिया काटी जम की पासी पणत नानक लेखा मांगै कवना जा चूकै मन अभमाना तास तास धर्म राय जपत है पए सच्चे की सरना मारू महला।

हर करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरन परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरयो नाम हरे। मारु महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जप्यो ते पाई

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

लागे हर हर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

पर हर का मन मानिया। सो सेवक चौहों जुग चौहों कुंट जानिया। जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो। सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता। जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो। हम अन दिन नाम लई करतारी।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह केते रूपे उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी। मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरयो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनी।

नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारी मारू महला पंजवां वेतन वेत भ्रमयो बहु भांति।

ठाकुर सेवक को सबरे हलक पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

पतत पिए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई।

सर्व गुण नायक तिसको कबहु न गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी ता स्यो रंग न लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदे निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह

पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाउ, अधिष्ट अगोचर पार ब्रह्म, मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार बजेउ, तह अमृत नाम चुआया था।

परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता

सब किस जान है मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहा दूजा, मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा, मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवह तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाऊ, रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

है सुपने दाम ना छड है राज कमाए करी जिन थैली तां कै संग ना चंचल चलिया एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाप महतारी सुत मीत प्रात ते गुहजी तां कै निकट न होई खलिया होए अवतूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रह मड़ी मसानी।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया।

सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहो बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख पर बहुत सजाई ता की कीमत कहन न जाई प्रभ बिसरत नरक मह पाया कह मात न बंद ना मीत ना जाया जिस को

गर्भदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मारू महला पंजवा कत कौ डहकावो लोगा मोहन देन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाऊ भगतां का आज्ञा का।

मोहन अलाखे अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा।

सगल त्यानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन भज संग साधु भव सागर उतर है पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ अवर सगल विसार रहाउ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक।

महा भोजन माही तुलोहो जाको लिखियो माथ दूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण।

वैदो न वाई भैनो न पाई एको सहाई राम ही कीता जसो हुआ पापा मलो तो हुआ सो सिमरो प्रधान ही काट कटे वासी सर्ब निवासी।

पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। मारू अष्टपदियां।

साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

सकई, सच रह लिवलाई, जीवन मुक्त सो आखिए, जिस विचों हम मैं जाई, तंदे तावत जग बांधिया, ना बूझे विचार, जम्मण मरन बसारिया, मन मुख मुगद गवार।

मारू महला पहला शब्द मरे ता मार मार भागो किस पह जाऊं जिस कह डर पै भागी है।

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनके नाम ना मन वसै,

दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही। मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

मनु विसारी है नित देव चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे ता सेवी सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

त्यों चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हाथ वडियाइयां मेल है मन चाओ। कीता क्या सलाही है कर देखै सोई। जिन की आसु मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई। पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला। पाप पुन दोए संग में खुदया जम।

खार समुंदर टंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी

करे अंतर गर्भ उर्ध लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

ओ हो मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बुरु दोह नैन ओह नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमर हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छ रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरा बिख्या स्यो उर जायो रहाओ रतन जवे हर बन जन आयो।

सुखदाई, एक निमुख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सुथान वसारियो, एक निमुख नहीं मन लायो, उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री, इस ही मैं उर जायो, जित को लायो तित ही लागा, तैसे कर्म कमायो, जो भयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो, मारु महला पंजवा, कर अनुग्रह राख लीनो, भयो साधु संग, हर नाम

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासक मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्वस संतना की रास।

पितर सतधरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है।

का मान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कस न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्व निदाना प्रभु कृपा।

तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने,

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहारे लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे जिन कीता तिसे ना जानी अंदा तां दुख सह परानिया खालक थामो पुल्ला मुठा

साहिब सबना सिर पाए मिले पौ जाई है भूले चूके मार्ग पावह आप पलाए तू है समझावह।

बहराई हे जिस बख्शे तिस दे वड्याई सब सहदाता तिल ना तमाई परपुर धार रहया ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई हे क्या सलाही अगम अपार है।

क्या जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल बिगास हरे सरस पर,

खेल तमाशा तुंडू कारी, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यो निस सुपने पखलाई है, तिनको तख्त मिली बड़ियाई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी, त्रे पवन ताड़ी लाई है, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त बढ़ाई, हों मैं गणत गवाई है, गणत गणिये सहसा जीए।

हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है, रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख दे तू है मन भाव है।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते भी।

है, हाथ निग्रह अपतीज ना पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई, कली काल में एक काल राखी, बिन गुर पूरे किन ना पाखी, मनमुख

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी ना

बोले शब्द मलाई जांत सिपाणा सहज समाई त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

अर्प मिलै जग जीवन हर सिंह बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती सगली तिन्ह अपाई है।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचह पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला तिथे अवर न कोई।

देखो कर नंदर विघ्न नाही गुरमुख तर तारी त्यों पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह अं

0: तिन्हें वरताई,
1: ज्यों तिस भाणा तिवें चलाई।
0: तिसै शरीक न दिसै कोई, आपे अपरे अपाराही। गुप्ते बूझो जुग चतवारी, घट घट वरतै उदर मझारी। जुग जुग एकाएकी वरतै,

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै, सारा

संग शब्द कर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंज है पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हम मैं गर्भ निवारा ही, गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहतै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे ता

अखर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु इयों आत्मरा मैलीनाहि नारद सारद सेवक तेरे

तारे उतारी अग्न पानी सागर अत गहरा गुर सतगुर पार उतारा ही मनमुख अंदले सो जी नाही आवह जाहे मरह मर जाही पूर्व लिखिया लेख न मिटई जम दर अंध खुआरा ही एक आवह जावह कर वास न पावह किरत के बांधे पाप कमावह अंदले सोजी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकारा ही पिर बिन क्या तिस धन शिंगारा पर पिर राती खसम बसारा ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है त्यों फोकट कार विकारा ही प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे नरक पचह

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरे आ राही मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जप हो सुख सारा ही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा ही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल ना पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवतारा ही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतियारा ही साकत माया कौ बहुतावे है नाम विसार कहां सुख पावे है त्रेहो गुण अंतर।

अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचहु अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरे जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखा पुन्य आगे राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

ताकत कूड़ कपट महतेका अहनस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरया हम मैं करता पवजल परया बिन गुर पार ना पावे कोई हर

ना आवे मनसो प्रभ अपरे अपारा ही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुल पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम मति उत्तम।

तप्त रहा ताही, चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला, साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही, अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन मह पांच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हम मैं प्रांता ही, इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै, अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही, दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवै जावै,

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जां को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्ध ताहाए जन्मे को वाजह वाधाए सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाए संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

नाम कटे अंतर पूजा अवरना दूजा काहा है ओढ़ना कथन है सिफ्त सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पहंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाह मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

आपन भाणे लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई, गुर बिन सो जी किने ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

तुझते उपजह तुझ माहि समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज। सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी। ओ

जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा।

ती साजी सृष्ट अपाए काया गणराजी अग्न पानी जियो ज्योत तुम्हारी सुन्ने कला रहा हिंदा सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश अपाए सुन्ने वर्ते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिय परम चुकाएंदा सुन्नो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा सुन्नो चंद सूरज गहनारी तिसकी ज्योत त्रे पवन सारी सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुन्नो धरत आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाएंदा सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी सुन्नो उपजी सुन्न समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुन्नो रात दिन सदोह किए उपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्म

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाड़ जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

चोहरे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई। तस्कर चोर न लागे ता को, धुन उपजै शब्द जगाया। तू एकंकार नरानम राजा, तू आप सवार है जन के काजा। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया। देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसह परधाना।

शब्द विचारा सच्चा महल निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार मरालम प्रभ आपे वाहे सुनाया पौ बैरागा सहज समाता हौ मैं त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्ब निरंजन राया दुख पै भंजन प्रभ अवनासी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाणे आपे जाने आप पछाणे सब तिसका चोज सबाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखण हारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रब रहया बनवारी पुरख अतीत वसै नेह केवल गुरपुरख है पुरख मलाया।

अकुल निरंजन गाया हो मैं अमित शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हो मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया।

सरना सच गुर शब्द जितै लग तरना कथ कथै देखै अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त न आवै जावै मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

चलह अभमानी उपज बिन सुख पाया उपज बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत लेहो तरो भाव दुत्तर मुक्त भये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर्धन तारी गुरमत शायर पाहन तारी गुरमत लेहो परम पद पाई है नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै जिन्हो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगा।

हर अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखे, एहन सजोत निरंतर पेखे, आनंद रूप

नारी देख अदिष्ट रहो लिव लागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुपहु पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ भंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपयो सतगुर मतवाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पव जल भारत राया एहो पव जल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आई है जाई है नानक गुरमुख मुक्त परायण हर कूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया, अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया, निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

लाए सोई बूझै पौ परम शरीरों जाई हे। आपे गुरमुख आपे देवै सच्चै शब्द सतगुर सेवै जरा जम तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा लिब लागी अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी सच्चै शब्द रते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम विहूणा कथ कथ लूझै।

किशु ना सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटै तुर फुरमाया। सत संगत मह तिन्ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है।

बार कृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कुटंब मोह ना बूझै गुरमुख होवे ता आखी सूझै अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजे है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इशनान दान करह नहीं बूझ, एक मनुआ मार मन स्यों लूझ, साचै शब्द।

पूरा भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़े नाही नदरी सहज मलाई है हम मैं माया मैल कमाया मर मर जम दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो हो लिवलाई है जोत सुभावे सोई करसी आप हो आ ना किस होसी ना

सो सब को जासी दूजे भाए बादा जम फासी सतगुर राखे से गन उबरे साचे साच समाई है। आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूझै।

सुख पाया सहजी साच समाई ही। तंदै तावत मन भया मनूरा फिर हुए कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई ही। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है। औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

लाई, गुरमुख लिव साकी सहज समाई, आपे मेलै आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई। है काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उर तारे, सतगुर सेवा ते सुख पाया।

नह पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जाय आप कराई, जित पावै तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पा

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हौ तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमें अपराधी, क्या मुँह लै बोलहै, ना हम गुण ना सेवा साधी, डुबदे पात

मन पी जाही। माया लहर शब्द निवारी, यह मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

ना सुख पाया ना ही साक्या अमृत पी जाय ही तिल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा सब किसे आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाय ही माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जाय ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पहु पाव है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है सतगुर भेटै ता मुक्त पाई हर हर रसना पी जाय ही मन मुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जीवन जिन अपनाया पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावे।

जिन गुर का शब्द पछाता ही एक मूल लगे उन्नी सुख पाया दानी लागे तिन जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को ला।

लह तोल, ज्यों भावै त्यों राखह रहना, गुरमुख एको जाता ही, जात दुपाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माही समाई, गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाता ही, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्द खोई, एक समय प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राता ही, काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द ना बुझे एयाना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाता ही, कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जीओ राखे उर तारी,

सारा पूर्व लिखिया सो फल पाया जिन आप मार पछाताई माया मोहे हर सिउ चित न लागे दूजे पाए कणा दुख आगे मन मुख परम भुले भेख धारी अंतकाल पछताताई हर कै भाणै हर गुण गाई सब किलविक काटे दुख सबाई हर निर्मल निर्मल है बाणी हर सेती मन राताई जिसनो नजर करे सो गुण निद पाई हऊ मैं मेरा ठाक रहाई गुण अवगुण काहि को दाता गुरमुख विरली जाता ही मेरा प्रभ निर्मल आते

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़ है शब्द ना बूझ है।

तीजा सो सच सेव हो सिरजनहारा शब्दे दुख निवारण हारा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम यथा आपे सच्चा सच वरताई एक

लाई, सच्ची भगती आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जाण है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सिष्ट अपाई, बिरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल पाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखे इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग में वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारू महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह इक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करतै तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवै सो अलिप तो वरतै मनमुख का क्या विसाहाई से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जान है भय बिन क्यों निरभउ सच पाई है जम काड लएगा साहाई अफरियो जम मारिया न जाई गुर कै शब्दे नेड़ न आई शब्द सुने ता दूर हो भागै मत

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावह सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

मरा पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाई आप पछाणै सो सब गुण जाणै गुर कै शब्द हर नाम बखाणै अन दिन नाम रत्ता।

काट अंतर सो काट निर्मलता ही सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मनता हाई शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभ साचे वे परवाही आपे गुणदाता शब्द मलाई शब्द का रसता हाई मनमुख भूला ठहर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई बिख्या राते बिख्या खोजै मर

तीजे कर्म कमाए, गुर कृपा ते घट अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहाए, से जन मिले तुर आप मलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जन गुण गावे नित साची, गुण गावे गुणी समाहाए, मारू महला तीजा, निचले एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्याइन, गुरमत सील सनाहाई, अंदर रंग सदा सचियारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वसिया घट अंतर, छोड़िया माया का लाहाई, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक ना होई, एक त्याइन सदा सुख पाइन, निश्चल राजत नाहाई, आवन जाना रखे ना कोई, जम्मन मरण तिसे ते होई, गुरमुख साचा

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिलवाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द कारज के हाही खिन मह हसै खिन मह रोवै

पावे है। अन रस राती रस न फीकी बोले, हर रस मूल न ताहाई। मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

हर पाया, हर जप जाप समाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार

ते बैरागी निज कर वासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हमै माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस भावै सतगुरु मलाए जा तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणै सदा रंग राता भाणै मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन जो

दुख पाई, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेख थाप उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेख पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

भौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाय मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाएंदा कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता ज्यो भावे तिवें चलाएंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराए करता आपे परम पलाएंदा।

उपाई सब खेल तमाशा तेरी वडियाई आपे वेक करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर एक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे स्यों चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन।

सेवह क्यों सुख पाई बिन नावह दुख पाईंदा आप करे तै आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई गुरमुख होवह से बंधन तोड़ह।

गणत चुकाए सच्च सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा

हट नाली सतगुर दिखाए अंतर नाली नावै काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारिए दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चै मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच्चै।

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवै, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवै, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई,

जय गुर कृपा ते मन तन पीजै रसना नाम त्याए रस पीजै रस ही ते रस पाएंदा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मलाएंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज करवासा पाएंदा सब

निःचलवासा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेव्यो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदै रखो उरतारी।

पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिनको नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारी बेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार ती कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अन दिन वाद समाली।

आई हित रंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमति रंग चढ़ाईंदा मनमुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई, सहजी सहज मलाईंदा, सच्चा महल सच्चे भंडारा।

कर्म त्याया जात सत संजम जे सच कमावे इह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस भिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जियो मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हम मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चा ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाए सतगुर ते सुख पाया मन मुखे अंधा अंध कमाए बहु संकट जोनी परमाए जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी गुर कै शब्द मरे मन मारी हो मैं जाहि समाया आवन जाने पर जब गोई बिन सतगुर थिर कोई ना होई अंतर जोत शब्द सुख वसिया।

मुख तो हुए पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवह शब्द प्यारा। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा सच्चे माही समाया। घरे अंदर को घर पाई गुर कै शब्द सहज सुपाई। उथे सोग वजोग न व्यापे सहजे सहज समाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्द।

नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवे जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत हो।

अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरनी चित लाई है। जिस भावै किसी

रतन मन परगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुरु कहो सद बल जाई। प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा, अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सोवे, गुरमुख नाम समाए समावे, नानक नाम त्याई है। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आखव खाणी। हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भव भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी,

तुझै पह करते हर अन देन नाम बखाणी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर बिन टेक धार अवन ना का।

आगण तमताई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, करके

प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईसै इस बिन दूजा अवरना दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवह जन तेरे एकंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा।

ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म युग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् का रचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाई फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखै तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझै चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जानै कर हासा ही आई आग्या फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो शूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुख दाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासाई मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्ची सच वरती जाही सच तप

सहज घर तेरै, हमयो तेरी दृष्टि जाहि, तेरी दात तुझै ते होवै, देह दान सब सह जंत लोवै, टूट न आवै पूर भंडारै, तृप्त रहे आगी जाहि, जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी, एक दातार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहि, कर है भगत अर रंग अपारा, खिन मैं थापयो थापन हारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगति जाहि, जिस देह दरस सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतुर स्वरूप सियाणा सोई, जो मन तेरा पावी जाहि, जिस चीत आवह सोवे परवाह, जिस चीत आवह सो साचा साहा, जिस चीत आवह तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहि, तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरै लै टूटा गंडा, सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहि, मरे नाही सद सद ही जीवै, अमर भया बनासी थीवै, ना को आवै ना को जावै, गुर दूर किया परमी जाहि, पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माहि समाणी, चढ़ै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि, बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार।

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवै माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाने। साधु तूर जाचे हैं जान तेरे, नानक सद कुर्बाना है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रव दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसह बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो गुर

आपे आप आप प्रवथिया आप उपाय रचियों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक कारबारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संगराचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

कारना मुख सलाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहिब सगल उदारना कर कर वेख कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैस है प्रभ पासी आनंद मंगल हर चलत तमाशे गुण गाव है अनहद धुन बाणी तह नानक दास चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देख खेल अपारा आप उपाय उपावन हारा अपना किया पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे किस सलाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पए निहाला एह भगतां की कालना गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटह सब बंधन एहो परम मोह पर जालना जह राख सोई सुख थाना सहजे होए सोई पल माना बिनसे बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिनसे अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारी आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना ऐसा कोवड भागी आया आठ पहर जिन कसमते आया तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना एह बख्शीस कसम के पावा आठ पैर कर जोड़ त्यावा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना भूल गवारा मिथन महारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाए निह चले एक नारायणा गुरपूरे की पौ सरनाई मोह सोग सब परम मटाई एको मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरस है बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपूरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साह भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायना पार जात लोड़ मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरह पंच धातु भै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु पारस जब भेट है गुरपूरा ता पारस परस दिखायना कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाईए हौ बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना गुर की महिमा वेद न जाने है तुष मात सुन सुन वाखाण है पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना
निर्गुण को संग लेहो रलाए, कर कृपा मोहे टहल लाए, पक्का फिरो पीसों संत आगे, चरण धोए सुख पाएना, बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम सरनाया, सदा सदा संत है संग राखो, एहो नाम दान देवायना, भये कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना, मारू सोले महला पंजवा।

है स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांच जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापै मंगना श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावै हर तेरे मिट है कमाते अव गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवै पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरियै संत संग मिल सागर तरियै अर्चा बंदन हर समत निवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मन तन अर्प धरी हरे आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाई सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद मादे अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाचै तुम्हें अरादै पतत पावन पूर्ण प्रभ सादै एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करनै हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बणी हर बाणी मन नाम मजीठै रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले महला पंजवा।

कीता। करन करामन सब तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाई।

तीहा हर जस तेरा पणी है, आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा, तू पिता सब बार कथारे, ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही कोवे पाड़ा, एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर, एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा, कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन से सारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा, हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा, सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़ेर सातल कर मनमुख गावारा, एक ना पार लंगावे है आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जी जंत उपाय समाया, विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगमे अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा, कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया, केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा, आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकराई, तिसह न आवे जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसह कह निबेड़ा, तिसह शरीक नाही रे कोई, किस ही बुते जवाब ना होई, नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेख चोज खड़ा, मारू महला पंजवा, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी, मद सूदर दामोदर स्वामी, रिखि केस गोवर्धन तारी, मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे, जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे, जग जीवन अबनासी ठाकुर, घट घट वासी है संगा, धरनी तर ईस नरसिंह नारायण, दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते, सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया, बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेतर मूर्त है सहसा, एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे, गोपी नाथ सगल है साथे, वासुदेव नरंजन दाते, वर्ण ना साको गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण, द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल, आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूरत जिस कदे नाही खो, अवनासी अवगत अगोचर, सब किस तुझ ही है लगा, श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी, केशव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा, निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देन सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा,
पीत पितंबर त्रिपवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पै आल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिलै जिसे आप मलाई आपो हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नव तन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जम दूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पा

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अन ग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कह नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलै ही कीने, ता की कीमत कहन ना जाई, जत कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बद है कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मन्यावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना।

एक बांधे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

आपे नदर करे आपे देवड़े आईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै अफरयो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास इश्क महब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजै खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदै लागे। सलोक महला पहला सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान माथे उभे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी। आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुनकै मन्या हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीद अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला मांडल बेद से बाजणु कणो धड़िऐ जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोई। महला पहला सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिऐ वड्डा वे परवाह। सतगुर मिले ता पार पवा मज भर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख पौड़ी। जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाए दे हर नाम ते आवे। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे। धर्म राय तिनका मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे। सलोक महला पहला सुनिए एक बखानिए सुर्ग मृत पयाल हुक्म ना जाई मिटिया जो लिखिया सो नाल। कौन मुआ कौन मारसी कौन आवे कौन जाए कौन रहसी नानका किसकी सुरत समाए। महला पहला हों मुआ मैं मारिया पौन वह दरियाओ तृष्णा थकी नानका जा मन रत्ता नाई।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग मह नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर धन पल्ल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाजह बिक संग्रह बिक स्यों तरह प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार वादा किया करन कहानियां कूड़ बोल करह आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजे परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभयाई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भूख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय। नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोय खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्याजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाउ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाउ अमृत का रस आया
मन वसया नाहू सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहं हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हम मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मनमुखे अंदर ना पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख वे गुत्ते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अग्गे नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरते सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवा माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलई क्या लपटाव है अंध गुर के चरण त्याए तू टूटे है माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक तिस शरणागती जिन जगते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं भै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार सो ब्राह्मण भला आखी है जे बूझ ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अग्गे जात ना पुछी है करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना हो।